थोड़ी साहिब हो दया और कृपा करे ता सही कार कराए सी। सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी। हुक्म नहीं होवे प्रमाणता खसमे का महल पाए सी। खसमे पावे सो करे मनोचिंत।

0: रहया भरपूर नानक पूड़ रहया भरपूर।
1: मत्थे टिक्का तेड़ धोती का खाई हथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैरों वे परवान मले स्थान ले पूजह प्राण।

अहनिस सहज सुपाय, दर्शन परसय गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसोह कुरसोह चट्टी है। तुद डिठ सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह दशाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सबना दावे साह। सज्जन सच्चा सिर शाह दशाह। जिस पास

भगत तेरे भगत सलाहन तुध जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जी वड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निःचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सोहोई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिस नौ कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी अजंत सब तेरा खेल विजोग मेल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनु तू जाना एह सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाण जिन हर सीविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर न कोई तू कर कर वेख जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़ पई ले निवासा पानी पावक तिन है किया पंक जो मोह पग नहीं चलै हम देखा तह डूबी आले मन एक न चेतस मूड़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई परापत मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भवजल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जप

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तव चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दे मोहे बचावह। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चौन चौन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने। जाब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत ताब देह अपारा। जाब आ करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड़ उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताक कर पाहन अनुमानत, महामूड़ कश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहोरे रच दीनी।
कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगादि स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता, सकल मलिश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा,

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ, सब तो हे बखाने ओ। दोहरा

खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। आप दूसन देई करता, जामकार मुगल चढ़ाया। एती मार पई कर लाने, तैं की दर्द न आया। करता तू सब ना का सोई, जे सकता सकते कौ मारे, ता मन रोस न होई। रहाओ सकता सी हमारे पै वगै, खसम सा पुरसाई। रतन विगाड़े विगोए कुत्ती, मोया सार न काई। आपे जोड़े विछोड़े आपे, वेख तेरी वड़ियाई। जे को ना उतराए वड़ा, साध करे मन पाने। खसम नदरी कीड़ा आवे, जेते चुगे दाने। मर मर जीवे तां किश पाए, नानक नाम वखाने।

कबहु कूरन चने बिनावे ज्यो राम राखे त्यो रहिए रे पाई हर की महिमा किश कथन न जाई रहाउ कबहु तुरे तुरंग नचावे कबहु पाए पनहियो न पावे कबहु खाट सुपेदी सुवावे कबहु पूम प्यार न पावे कहत नाम देओ एक नाम निस्तारे जिह गुर मिले तेह पार उतारे बालक किशोर

एक ही जन्म होए अनक प्रकार है, जैसे निस दिन तिथ वार पक्ष मास रुत, जैसे थित वार पक्ष मास रुत, चतुर संसारा त्रिविद सकल विस्थार है। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाय, दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। होवै सिफत खसम दी नूर हर सह कुर सह चटिया, तुद डिठे सच्चे पात साह माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पात साह सिर साहा दैसाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाह। सज्जन सच्चा पात साह सिर साहा दैसाह, जिस

हम अब गुण परे एक गुण नाही। अमृत षाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास

तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी, सजन सच्चा पातशाह सिर सांहांदे। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा विसाहु, सजन सच्चा पातशाह सिर सांहांदे। जिस पास

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु।

गए मशक्कत कार, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

पौड़ी बिन सतगुरु किन न पाए, बिन सतगुरु किन न पाया। सतगुरु विचार रखे उनकर प्रगटक सुनाया, सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सचा साहेब एक तू जिन सचो सज वरताया, जिस तू दे तिस मिले सता तिनी सच कमाया, सतगुर मिले सच पाया जिन कै हृदय सच वसाया, मूर्ख सत न जानी मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया।

कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार, कूड़ सोयना, कूड़ रूपा, कूड़ पहननहार, कूड़ काया, कूड़ कपड़, कूड़ रूप पार, कूड़ मिया, कूड़ बीबी, खप होए खार, कूड़ कूड़े नेहों लगा विसरिया करतार,

पौड़ी तुर करम जिना का दुध पाया था तिनी खसम ते आया एना जनता के बस किस नहीं तुद वे की जग दुपाया एक ना नो तू मेले का पोह तुद खुआया गुर कृपा ते जाने अज तै तू दा बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया।

दुख दारू सुख रोग भया जा सुखताम न होई। तू करता करना मैं नाही जाहो कर न होई। बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया।

पौड़ी पड़िया वे गुनेगार तो मी साधना मारी है। जेहा काले कलना ते वे हो नौ पचारी है। ऐसी कलना खेडिया जित दरगह गया हारी है। पड़िया त्यो मैं विचार अगे विचारी है। मोहे चले सो गए मारी है। मोहे चले सो गए मारी।

0: संतोख सरोवर बसे अमे रस रसन प्रकाशे मिलत शांत उपजे दुरत दुरंत नासे सुख सागर पायो तिंत हर मग न हुटे संजम सत संतोख सिर स न होम फुटे सतगुर परमान बिदने सिरो जग जस तुर बजायो गुर रामदास कल उचरे तै अभय अमर पद पायो।
1: जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दड़ायो नवनित नाम निदान रिद सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अविनाशी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दड़ायो गुर रामदास कल उचरे तै हर प्रेम पदार्थ पायो।
2: प्रेम भगत परवा प्रीत पुबली ना हुट्टे सतगुर शब्द यथा अमें तारा रस गुट्टे मत माता संतोख पिता सर सह समायो अयूनी संभवयो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचर तै जगत उदारन पायो अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल उचर तैं जगत उदारन पायो।
3: जगत उदारन नव निदान भगतें पव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन दे जन बड़ भागे ते मुक्ते पे सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो।
4: सेज सदा सहचवान संतोख सराय चो सदा सील सुना हो सो है गुरु सब समाचर्यो नाम टेक संगाद बो है अजुनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचरे तू सहज सरोवर भास।
5: गुरु जिन को सुप्रसन्न नाम हर हृदय निवास जिनको गुरु सुप्रसन्न दुरत दुरंतर नासै गुरु जिन को सुप्रसन्न मान अभिमान निवारे जिनको गुर सुप्रसन्न शब्द लग पव जल तार परचो परमान गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण पज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग।
6: सतगुरु खेमा ताणिया जुग जू समाणे
1: ਆਨ ਭਉ ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਗਾਣੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ, ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮਹੂ ਰਸ ਜਾਣੇ, ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਣ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਰ ਤਰਿਆ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰਿਆ ਭਰਾ ਸਰ ਭਰਿਆ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ।
6: ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ, ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਉ, ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਜਾ ਕਉ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਧਾਰੈ, ਸ਼ਬਦ ਰਿਦ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖੋਵੈ ਜੀਉ, ਜੀਅਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਵਖਿਆਤਾ, ਐਹਨ ਇਸ ਧਿਆਨ ਧਾਵੈ ਪਲਕ ਨ ਸੋਵੈ ਜੀਉ, ਜਾਂ ਕਉ ਦੇਖਤ ਦਰਿਦਰ ਜਾਵੈ, ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਧੋਵੈ ਜੀਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ,

पौड़ी कप्पड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना हुक्म की अमन पांदे रही पिड़े गए जावना नंगा दो जग चालिया ता दिसे खरे डरावना करोगन पछोतावना करोगन पछोतावना।